याज्ञा करम है सर्वबलदारियु अनाति अनंतु दिव्यनी मोक्षांपन मातावन कान्यमारिय तुमांगे गतहा प्राणय ओबिगे श्री कुमारे अटोबिन वासस्थानयक वनलेस इस्प्रीतु सांतु अरमीन हेतु युक्त करदी वदाला वेद अपसतु सिहिकरनो तुमियगे दयाबरे आज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरुवलिन हा अनवर्त मरनेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सुहांसे उदिसाम अपटले बेवा आमेन।

याज्ञा करम है सर्व बलदारियो अनाति अनंतो दिव्येनी मोक्षां पन मातावन कान्यमारिय तुमानगे गतहा प्राणय ओबगे श्री कुमारयाट ओबिन वासस्थानयक वन लेस इस्प्रीतु सांतु अरमिन हेतु युक्त कर दी वदाला वेद अप सतुटु सिहि करनो तुमियगे दयाबर याज्ञाव बला अपटे देन्नाव नपुरु वलिन हा अनवरत मरणेन गलवीम सलसो मनव मेकी दे अपगे स्वामी वो जेसु क्रिसु सहांसे उदिसाम अपट लेबेवा आमेन।